0: दरी 2.7 थर्ड एफएम का गया देवर सिरी दरी 3.7 थर्ड एफएम की नौ नेक्स्ट वाला सीन को नखा पुनः को पुनः पापा आलम ना मरामी सलामत मगर स्वीट हार्ट्स हाँ नको मग नाती कहीं मुद्दा 7 पीएम टुनाइट इट्स गोना बी योर हार्वी स्टोन पर नमन साथी हार्ड लाइंस पर साथी मगर लाइव ना लाइव शाउट आउट्स Siyempre ba, bukas ulit tayo magkakabilig at magkakasama. Alas 6 umaga hanggang alas 9. Of course, my name is Jason Steele. Oy! Ilang araw na lang bago magpasko? 74 days na lang. Hala! Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Padayon mga sweethearts sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Pasko!